0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवार्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

जमना तो था ही, फिर 1883 में कार्ल मार्क्स चल बसे और पीछे छोड़ गए मार्क्सवाद, जिसमें अलग अलग देशों के कम्युनिस्टों ने अपना अपना छौंका लगाया और उसे अपने कन्वीनियंस या सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया। कार्ल मार्क्स के निधन के समय 13 साल के व्लादिमीर लेनिन ने आगे चलकर मार्क्सवादी थ्योरी को जमीनी हकीकत में बदला, और वो ऐसे कि उन्होंने माना कि क्रांति तो होनी चाहिए लेकिन मजदूर अकेले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक सख्त और अनुशासित एलीट पार्टी की जरूरत है। इस तरह दुनिया की पहली रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, जिसे कहा गया है बोल्शेविक पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन भी कहते हैं। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद उनके साथी लियोन ट्रॉट्स्की मार्क्सवाद को परमानेंट रेवोल्यूशन के तौर पर पूरी दुनिया में फैलाने के पक्षधर बने। 1929 में स्टालिन ने सत्ता संभाली और ट्रॉट्स्की को देश निकाला दिया। उनका कहना था कि दुनिया में क्रांति बाद में आती रहेगी, पहले सोवियत संघ को ताकतवर बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने ताबड़तोड़ नीतियां लागू की। स्टालिन जो कईयों के लिए हीरो बने, लेकिन उन पर लिखी गई कई किताबों में वो तानाशाह बताए गए। 1930 से 40 का दौर, जब रूस में स्टालिन अपने तरीके का कम्युनिज्म ला रहे थे, तब चीन में माओ ज़ेडोंग मार्क्सवाद में अपना एक पुट लेकर आए। उन्होंने मार्क्स के विचारों को चीन के हिसाब से ढाला। जहां मार्क्स ने फैक्ट्री मजदूरों को क्रांति का हीरो माना था, वहीं माओ ने किसानों और गुरिल्ला युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर को बगावत का मुख्य जरिया बताया। गांव और किसानों पर टिकी उनकी इस रणनीति को माओवाद कहा गया। अब वही माओवाद जिस नाम से जब 2004 में भारत में एक पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट माओइस्ट, तो भारत सरकार ने बढ़ती हिंसा को देखते हुए यूएपीए के तहत इस पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उसे बैन कर दिया। अब भारत की बात निकली तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि भारत में वामपंथ, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, माओवादी, इन शब्दों की ऐसी खिचड़ी पकी है कि 2022 में राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बताना पड़ा कि उन्होंने कभी भी, यानी उनकी सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। राय ने अपनी बात पूरी करते हुए वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। अब अर्बन नक्सल हो या दिमागी नक्सल, लेकिन ये नक्सल शब्द का मतलब समझने के लिए और ये कहां से आया है समझने के लिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब कैसे बनी, इसे समझना जरूरी है। 1910 के दशक में कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में तेजी आई। यही वो दौर था जब रूस की क्रांति से दुनिया के कई देशों में कम्युनिस्ट विचार का असर तेजी से दिखने लगा। इस दौर के बारे में इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में हिस्टोरियन प्रोफेसर बिपिन चंद्रा लिखते हैं, आजादी की राष्ट्रीय लड़ाई की धारा और एक्सप्लॉइटेड वर्ग यानी शोषित वर्गों की सोशल पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की लड़ाई, दोनों धाराएं एक दूसरे के पास आ रही थी। सोशलिज्म का विचार भारत की जमीन में जड़ें जमाने लगा था। सोशलिस्ट विचार भारतीय युवाओं को काफी पसंद आ रहा था। इसके प्रतीक थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। धीरे धीरे इस विचारधारा से दो शक्तिशाली पार्टियां निकली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी अपने चुनावी निशान हसिया और गेहूं की बाली के साथ न सिर्फ चुनाव लड़ रही थी, बल्कि 1964 में जब पहली बार टूट हुई उस पार्टी में, उससे पहले वो 3 लोकसभा चुनाव में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी थी। यहाँ एक अलग तरीके की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी, जहाँ कम्युनिस्ट सदस्य संसद में बैठकर विदेश नीति, किसान, मजदूर और अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे। साल 1957 के दूसरे आम चुनाव में तो कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया चौंक गई। केरल में अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता, वही केरल जिसे उस वक्त लोग भारत का समस्याओं से भरा राज्य कहते थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस कह रहा था कम्युनिज्म की बात शांति से करो, चीन का मानना था हथियार के बिना कोई क्रांति नहीं होती, सीपीआई के पुराने नेताओं ने रूस का साथ दिया, लेकिन जो एंग्री यंग मैन वाला काडर था उसे चीन का एग्रेसिव अंदाज पसंद आया। 1964 में पार्टी टूटी और एक नई पार्टी बनी सीपीआईएम, एम यानी मार्क्सवादी। 1969 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने सीपीआईएम से भी नाता तोड़ा और सीपीआईएमएल यानी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनाए, जिसका मार्क्स और लेनिन से कम एम से भी नाता तोड़ा और सीपीआईएमएल यानी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनाए, जिसका मार्क्स और लेनिन से कम माओ से ज्यादा नाता था। सीपीआईएमएल का नारा था चीन के चेयरमैन हमारे चेयरमैन। लेकिन नक्सलवाद, इन सब के बीच नक्सलवाद कहाँ चला गया, वो कब आया था?
नक्सलवाद की चिंगारी साल 1967 में पश्चिम बंगाल के उत्तर के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से भड़की थी। सिलीगुड़ी में सीपीआईएम के कट्टरपंथी धड़ों ने

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना समझें, लेकिन अपने शरीके हयात को धमकी भरे पैगाम भेजना, उनकी लोकेशन को खुफिया तौर पर ट्रैक करना या उनके फोन की सरगर्मियों पर कंट्रोल रखना भी तो बदसलूकी ही है। टेक्नोलॉजी के जरिए की जाने वाली बदसलूकी जिस्मानी तो नहीं होती, लेकिन इसके असरात उतने ही संगीन और नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने पहचानने वाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर कंट्रोल रखने के लिए कर रहा है तो तब्दीली मुमकिन है। मजीद मालूमात के लिए alberta.ca/ngbv पर जाएं। हुकूमत अल्बर्टा की ओर से पैगाम।
2: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते सुनो हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम radiosursangam.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम।
3: दोस्तों डैन सिद्धू लाइव इन लोक सत तुसी हर एतवार 5 बजे तो लेकर 7 बजे तक सुन सकते हो। समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक पक्ष दे मसले मिंटू गुरे सरिया तो पंजाब ते भारत दीआं खबरां। स्टूडियो दा नंबर 403-717-1947।
4: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: जाके सुप्रीम कोर्ट से अर्जी देती कि मेरे खिलाफ ये माणा ने जम मुकदमा रद्द करो जी, बेरोड़ा चलता पिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहता कि मुकदमा बेरोड़ा नहीं, तो जिन्होंने खिलाफ मुकदमा इस तरह का बयान दिता सी वो पीड़ित धरिया वो मुकदमा नहीं छड़ना चाहती, तो तू जाके अदालत में अपना मुकदमा भुगत, तेन इस तरह किदा छड़िया जा सकता। इस तरह के केस कल्ले पंजाब विच नहीं दूजे सूबे च भी अगे कई बार होए ने, ते जदों भी हुंदे आ जिस ते मुकदमा बनता वह तो कहिंदे हुंदे कि मुकदमा खारिज करो, दूसरियां धिरां कहिंदियां हुंदियां जी इन्हें बेइज्जती बहुत की है असीं मुकदमा नहीं छड़ना। अदालत आम तौर पर हजे मुकदमा नहीं छड़ती, कदे कदे कोई कोई केस हुंदा जिहदे विच अदालत फैसला कर दिंदी है कि मुकदमा छड़ देना चाहिए। मिसाल के तौर पर पिछले जे किसी बंदे ने यह जाके केस करता कि उसकी जात के खिलाफ टिप्पणियां की गई, इस गल की कितने उन्हें कोई क्लिप भी पेश कर दी, अदालत ने आख्या कि जे ये गल्लां पब्लिकली हो जनतक तौर पर हो केस बनता। दो बंदे अपने घर च आपो गल्लां करते हैं जां फोन पर करते हैं, दो गल्लां दी आपसी चर्चा दे विच कई कुछ लोग कह जाते हैं वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता, उन्होंने प्राइवेट गलबात से एक केस नहीं बनता। तो इस तरह वक् वक् मामलों के अदालत वक् वक् स्टैंड लेंदियां ने, इहोजे सारे मामले ना चलते रहेंगे ना इहोजे सारे मामले रद्द होंगे। सुखबीर सिंह बादल ने झाक से आखिरी झाक यह सी कि सुप्रीम कोर्ट तो केस रद्द हो जूगा, वो झाक पूरी नहीं हुई, हुण इहनूं इह केस लड़ना पएगा। हाँ इस दिलचस्प गल है कि सुप्रीम कोर्ट का केस जो वकील ने लड़िया वह कांग्रेस का आगू भी है तो केंद्र का मंत्री भी रह चुका मनमोहन सिंह की सरकार, यानी उपर जाके योजे मामलों में कई बार पार्टी लाइन तो उपर उठ के भी एक दूजे के केस जो वकील वो लड़ देंगे तो इन गलत नहीं समझा जाता।
1: जी पंच साहब, सज्जन कुमार दुनिया तो चले गए पर कॉन्ट्रोवर्सी जी उन्होंने नाम से बहुत हो रही है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह कांग्रेस लिए रोल मॉडल सी, इस तो बाद बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया, सारा मामला की है जी।
0: दीपेंद्र सिंह हुड्डा साधारण बंदा नहीं, उन्होंने पार्लीमेंट मैंबर भी है ते कांग्रेस पार्टी दे हरियाणे दे सबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा का पुत्र है। सज्जन कुमार का मामला सारे लोगों को पता, जिन्ना बदनाम से उन्हें सिखा नाल जिहड़ियां जातियां कीतियां सन, इंदिरा गांधी के कतल तो बाद उन्हें वोटर लिस्टां लैके ते अपने बंदिआं नूं दस्सिआ कि आ पुराने पुराने घर सिखां दे इहनां ते हमला करो, घरां नूं अग्गां लाईआं गईआं, सिखां नूं बाहर कढ के धू धू के मारिआ गया, कईआं नूं जिउंदिआं नूं अग्ग ला के साड़ दित्ता गया गल च टायर पा के जां होर तरीके नाल। पर उहदे बंदे जदों आउंदे सी जिहड़ा आउंदा सी ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਭੁੰਨਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ, ਉਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ